0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव वसन कुमा वसन कालिका गोरछ गरुण र दाना बहरू नागमा रावण नासिका सञ्चल भई घुमा।

0: पड़ो धर्म झुंड बहारा काची जाती है एक एक अति नाशियो
1: साजन सिद्ध समस्त दाजो भाई मानो नाम अधिकारायो स्वर्ण वज कविता प्रसन्न मनले संक्षेपी भारत भयो।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: चिन पसल चरीकोट बीच बजार गीताश्री स्टोर को ठीक अगाड़ी। थप जानकारी को लागि संपर्क नंबर 9864-6-0 र 9510-89-6-77। बिहानी सिलाई मेसिन पसल चरीकोट बीच बजार।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: हाईटेक नर्सरी में उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी विभिन्न बिरुवा को भरपर्दो गंतव्य कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म यहां लोरसल्ला टिमूर कागती सुन्तला जापानीज हलुआ बेद जापानीज नस्पति रेड किबी ग्रीन किबी मेकाडेमिया लगायत विभिन्न फलफूल तथा जड़ीबुटी जन्य बिरुवा उपलब्ध छन्। सीजन अनुसार का बिरुवा खरीद गर्न आज सम्पर्क गर्नुहोस्। संस्थागत खरीद में विशेष छूट को व्यवस्था पनि छ। व्यक्तिगत रूप में 100 भन्दा बढी बिरुवा खरीद गर्दा पनि छूट को व्यवस्था गरिएको छ। सम्पर्क व्यक्ति ईश्वर थापा, फोन नम्बर 9849185662 9849185662। कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म भीमेश्वर नगरपालिका 3 चरीकोट भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय सँगै।
2: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: दिल बोले तो हाट हाट
1: हमारा यार सौदा सौदा
0: ओहो
2: दोनों डील कर
0: टाइट वेरी टाइट।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

गाईला चरोरा ना ओइना बनाया बासे लया फुखोला साथी तारा लया सुको धारा बासे लया खोलो। यो काला मुखले के भन्यो होला रिसाउना लयमा फोला।

दसैं रत्यावर मत आफै आउला तिजमाले न पठाइदेऊ फुलफुलो जाइले मेरो माइती भाइले तिजमा लिन

घड़ी लाई दाम दी मलाई सामजी सामजी कहले पाने नारो नो तमा को ताऊ मेरे बुवा बाऊ समझे समझे नारो नो चितुरा कागज कालो कलमसी पहिलो रे अक्षरी भाई मात्र

बैठी सावानी आई रही चुमा पानी ओरी ओ राजा रानी धानी आई उन संसार की नहीं रही ले यो जीवन ऐसा ही सुख का था ना यो घर को पी रही ले ओरी ओ

0: कलेजो काटिला को सानु माया भर्ते
1: भन्दा समय रे भो भर गोरु धाइचु कस्ता दिनमा।

बिराई क्यारे भंचु फिराए राय पादे रे माए न फोटो छेने राजा उसरे समा कई डोरे

0: 살라가리제 타바부티라고 강서우아마티라 베치네트라마이라후나가요 베치디에야키라 제일바르노포트라라이키니가라마 문드리헤루레자와 라자리그니에게가라추바니 체크하거라에사와 에바이허머추바르라이 तर्दैन काल केही गरी मलाई सकभर बाँची उपाय गरौला उपाय केही नभए अवश्य मरौला
1: हस्त धन्यवाद
2: के पूर्वक राजे पालन गर्दै हरिचन्द्रजी

ने इस तरह भागे गुरु पासो गाले होला ने छोरा मलाये भने राजा को मिनती सुनी बरुणले भन्दा भए बर होला पुत्र तिमी उन